0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वाइस प्रिंसिपल फादर अजय मिंज येसु संघी के साथ हुए भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल जीवन की अधिकांश गतिविधियां डिजिटल तकनीकी एवं इंटरनेट से चलती हैं। यह कथन संत पापा लियो चौदहवें की हैं और जिससे हम सभी सहमत हैं। डिजिटल तकनीकी एवं इंटरनेट से जीवन सहज और सुविधाजनक प्रतीत होता है। इंटरनेट की वजह से युवाओं के पास कैरियर, पढ़ाई और मनोरंजन के ढेरों विकल्प हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। बहुत सारे विकल्प होने के कारण युवा भ्रमित हो जाते हैं और अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते। इंटरनेट के कारण पश्चिमी जीवन शैली, फैशन और संगीत का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह लोगों में अपनी संस्कृति एवं परंपरा खोने का खतरा है। सलाह दी जाती है कि हमें अपनी संस्कृति एवं परंपरा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति से ही हमारी पहचान बनती है। यह हमें आपस में जोड़ती, जीने का ढंग, सही और गलत की पहचान तथा समाज में रहने के नियम सिखाती है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वाइस प्रिंसिपल श्रद्धेय फादर अजय मिंज येसु संघी बतला रहे हैं कि युवाओं को अपनी संस्कृति को बनाए रखना क्यों जरूरी है और जेन जी को क्या करना चाहिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्रद्धेय फादर अजय मिंज येसु संघी के साथ एक भेंट वार्ता, जिनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
1: मैं फादर अजय मिंज हूँ, येसु समाजी हूँ और बिलोंग करता हूँ रांची प्रोविंस से। और बेसिकली मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में हूँ और वहाँ एजुकेशन के साथ साथ युवाओं के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। मेरा घर मांडर पारिश पड़ता है और मैं 4 साल आईकफ जो कहते हैं उनका भी मैं स्टेट एडवाइज़र भी रहा, तो उनके साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और ये भी महसूस करने को मिला। और अभी जो फिलहाल झारखंड में सरना और ईसाई आदिवासी के बीच जो तकरार होने लगा है, कभी कभी लगता है कि शायद युवा को अभी अपनी जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है और अपना जो जीवन है उन्होंने पाया है अपने पुरखों से, शायद उसको भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे जो ख्रिस्तीय युवा हैं और सरना युवा हैं, फिर उनमें जो तकरार होगी, आपसी समझ में कमी पड़ सकती है और जिसके कारण आपस में फूट भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमारे सेंट्रल इंडिया का जो चर्च है, आदिवासी चर्च है, वहाँ एक फूट इन द सेंस सरना और ख्रिस्तीय के बीच, और उस जिसके कारण हमारे आदिवासी जीवन में भी प्रभाव होगा और जो हमारे चर्च को भी बहुत प्रभाव कर सकता है। और हमारा जो काम करने का जगह है, शायद हम उतने खुले तौर पर, उतने

0: विश्वासी केवल धर्म धर्म से नहीं डिफाइन होता, ये हमारी संस्कृति है।
1: जी
0: संस्कृति जो शायद हमें जन्म से ही मिलता है, और जन्म से ही हम अपनी भाषा को सीखते हैं, नाच गान करते हैं, पूरे लाइफ स्टाइल जीवन दर्शन जो है उसको हम आगे लेकर चलते हैं। और इसीलिए मैं जब जो ये चीज़ें कहते हैं उनका मैं खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन अपने आप में विरोध भी करता हूँ कि वो सही नहीं है उनका कहना। और आदिवासी जन्म से होता है, कोई धर्म से नहीं, क्योंकि सरना धर्म या तो जैसे भी हम कहें या तो ईसाई धर्म शुरू से नहीं रहा है, उसके
1: जी
0: पहले ही हम आदिवासी थे और हम कंटिन्यू करते हैं आदिवासी होना।
1: जी
0: लेकिन
1: हाँ
0: अगर वही मुझको डर है, अगर हम संस्कृति को नकारते जाएंगे, चर्च में अगर होकर हम कटते जाएंगे, तो शायद लोग हमें ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे कि आप संस्कृति आपको पता नहीं है, भाषा पता नहीं है, फिर आप जीवन दर्शन का पता नहीं है, तो फिर आप किस बात का आदिवासी हैं। तो हमें उस चर्च में होते हुए उन चीज़ों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कई सारी चुनौतियाँ हैं, तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोग कहने का मतलब जो बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं?
0: सबसे पहले बड़े जन को हम तो समझा तो नहीं सकते हैं, फिर भी अपना जो अपने तरीके से जो हम इनिशिएटिव लेने की बात होती है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, कॉलेज में हूँ, तो अपने स्तर पर अगर मैं लोगों को, जैसे मैं हॉस्टल भी देखता हूँ, तो अगर मैं वहाँ बच्चों को अपने तरीके से एक करता हूँ, और ऐसा करने के बाद मैं एक जरूर मैसेज भी देता हूँ बाहर, कि वे भी बाहर जाके जब भी सुनते हैं कि आदिवासी और ख्रिस्ती अलग हैं, तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं मेरे जगह रह। तो एक एक तरीका है व्यक्तिगत तौर पर जो भी हम कर रहे हैं वहाँ फूट की दिशा में काम ना करें, लेकिन हमेशा उसको एक करने के दिशा में काम करें। और साथ ही साथ जहाँ भी बन पड़े, हमारे दायरे के बाहर अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हमें उसमें भी भाग लेने की आवश्यकता, ताकि वहाँ जो होती है उनके जो अंदर की बात है उसे भी हम समझ पाएं, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो शायद फूट या तो एक दूसरे से हम अलगाव की ओर आगे बढ़ते रहेंगे।
1: भी सभी विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को रख रहे हैं, तो और उनको मतलब शांत तरीके से ही कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, फिर भी कई लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जब भी किसी चीज़ के लिए हम खड़े होते हैं तो कठिनाइयाँ तो होती हैं, और एक चीज़ का मैं यह कहूँगा युवाओं को, कि जब आप सच्चाई को समझ गए हैं तो आप निश्चित तौर पर कठिनाई होने के बावजूद आपको खड़ा होना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युवा जन ही समाज को एक नई दिशा देते हैं, बदलाव वही लोग लाते हैं, क्योंकि वे चीज़ों को देखते हैं। हो सकता है कभी कभी उनमें ज़्यादा ही उग्रता आ सकती है, वहीं पर उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन अगर उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया है तो उस सच्चाई को आगे तक लेने की आवश्यकता है। अपने आप को निश्चित तौर पर समझदार लोगों से भी जुड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार उनकी उग्रता या तो उनमें जो भावनात्मक उग्रता है वो शायद कभी कभी वो डिस्टर्ब कर सकता है, और उन्हें कभी कभी सही दिशा से सच्चाई से अलग भी ले सकता है, और समाज में डिस्टरबेंस भी हो सकता है। इसलिए उन चीज़ों से बचकर आगे सच्चाई को लेकर, सच्चाई के लिए हमेशा लड़ाई करते रहना है।
1: तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका नशा। लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओ, नशा सुनते ही आपके मन में क्या विचार आया? शायद शराब की बोतल, शराबी, शराब खाना वगैरह। शराब की नशा को छोड़ और भी नशा है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, जैसे काम की नशा या वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक काम में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस वजह से वे हमेशा तनाव में रहते हैं और कभी आराम नहीं कर पाते। उसी तरह प्यार का नशा। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, प्यार एक नशा है। अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार

0: प्यार में शराब जैसा नशा होता है। दरअसल प्यार में पड़े लोगों के मस्तिष्क में जिस तरह के बदलाव होते हैं वो दरअसल बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि शराब पीने के बाद। अगर हमें नशा करना है तो समाज कल्याण के कार्यों का करना चाहिए। समाज सेवा, शिक्षा दान और दीन दुखियों की सेवा का नशा जीवन में अपनाना चाहिए। महान लोगों ने दीन दुखियों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर जीवन को सार्थक बनाया। आपको नशा करना है तो समाज सेवा, शिक्षा दान और दीन दुखियों की सेवा का नशा करके तो देखिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका नशा।
1: इतनी रात गए पिछले दरवाजे से कोई आ रहा है। अजी सुनते हो? देखो तो जरा कहीं चोर न घुसाए हो घर में। रात के 1:30 बज रहे हैं।
2: अरे चिंता मत करो, ये जगदीश भाई होंगे, हर छुट्टी पर ऐसे ही पीकर आते हैं।
1: लेकिन अब वो क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है।
2: कुछ नहीं, खाना खाकर सो जाएंगे। घर में कोई भी नहीं है, खाना साथ ही लाए होंगे। तुम भी सो जाओ। जगदीश भाई के बारे में सभी को बस इतना ही मालूम है कि वे पास के अस्पताल में काम करते हैं, छुट्टी कभी नहीं करते। इसके पीछे भी कारण यह है कि वहीं पर दोनों वक्त का खाना मिल जाता है। उनकी पत्नी और लड़का सालों पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे।
1: बेचारे अब अकेले ही रहते हैं।
2: हाँ, तभी से छुट्टी के दिन इस तरह से दिखाई देते हैं।
1: लेकिन सुनिए तो, ये जगदीश भाई।
2: अरे अब तुम सो जाओ ना, मुझे इतना मालूम था, मैंने बता दिया। अब बाकी कल सुबह उठकर माँ से पूछ लेना।
3: हाँ ले आ, यहाँ सीढ़ियों पर ही दे दे।
1: माँ जी एक बात बताइए।
3: हाँ बेटा पूछ।
1: माँ जी ये अपने घर के पिछवाड़े में जो जगदीश भाई रहते हैं।
3: हाँ क्या हुआ उन्हें? तुझसे कुछ बोले तो नहीं वो?
1: जी बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनके बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा।
3: अरे सुनंदा, जगदीश भाई के बारे में मोहल्ले में हवा अच्छी नहीं है।
1: लेकिन क्या आज तक किसी ने भी उन्हें शराब खरीदते या बोतल हाथ में लिए हुए देखा है?
3: अरे नशे से लड़खड़ाते आदमी की पहचान तो सभी को होती है। तुम्हारी शादी के पहले सामने की पंडिताइन बोली भी थी कि अब जगदीश भाई को यहाँ से निकाल देना चाहिए। खैर वे जो टिके हैं सो टिके हैं यहाँ पर।
1: सचमुच सुनकर अजीब सा लगता है। लाइए मैं कप अंदर ले जाती हूँ, आप आराम से ऊपर जाइएगा, सीढ़ियों पर फिसलन है।
3: आह सुनंदा।
1: माजी
3: जल्दी आ।
1: अभी आई। माजी माजी, अरे लगता है आपका पैर फिसल गया है। हे भगवान कितना खून बह रहा है। माँ जी चलिए चलिए मैं ही ले चलती हूँ आपको। बस बस पास में ही अस्पताल।
3: हे भगवान
1: बस
3: बड़ा दर्द कर रहा है सुनंदा।
1: बस माँ जी अस्पताल आ ही गया बस।
4: अरे सुनंदा बेटी तुम यहाँ, और ये माँ जी को क्या हो गया?
1: जी ये सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, काफी खून बह गया है।
4: तुम चिंता ना करो, मैं सब कर दूंगा, इसी अस्पताल में तो हूँ पिछले 10 सालों से। आइए माँ जी।
1: माँ जी माँ जी आराम से, अब मैं यहीं पर हूँ।
4: तुम चिंता ना करो बेटी, मैं इनका ड्रेसिंग करवा कर अभी लाता हूँ।
1: जी ओह अब ये भी फोन को कितना बिजी रखते हैं। हेलो हाँ सुनिए, देखिए माँ जी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई हैं। हाँ चोट काफी है। क्या कहा? नहीं आ सकते? ठीक है अच्छा मैं देख लूंगी, शायद माँ जी को ड्रेसिंग करवा कर छोड़ देंगे। जी आज पूरे 2 हफ्ते हो गए आपको ड्रेसिंग करवाए हुए। डॉक्टर ने भी आज कहा कि समय पर इलाज मिलने के कारण घाव इतनी जल्दी भरा है।
3: अरे वो तो भला हो उस जगदीश भाई का, नहीं तो हमारे जैसे कितने ही मरीज थे वहाँ।
1: हाँ लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो अस्पताल में क्या काम करते हैं और छुट्टी के दिन ही क्यों शराब पीते हैं। शक्ल से तो वो आज ऐसे नहीं लगे।
3: अरे मुझे भी बहुत अचरज हुआ, और तो और उसने इलाज के पैसे भी नहीं लिए।
1: माँ जी इस बार किराया देने आएंगे ना तो मत लीजिए।
3: नहीं नहीं वो कहाँ करने देता है ऐसा। एक काम कर सुनंदा।
1: क्या माँ जी?
3: तूने आज खीर पूरी बनाई है ना?
1: हाँ।
3: जगदीश भाई को बड़ी पसंद है। अभी वो घर में होंगे, आज अस्पताल में रसोईया छुट्टी पर है। बढ़िया थाली परोस कर ले जा उनके लिए।
1: जी जी, अभी जाती हूँ।
4: कौन है?
1: जी मैं सुनंदा, आपके लिए खाना लाई हूँ।
4: अरे सुनंदा बेटी, तुमने क्यों तकलीफ की?
1: माँ जी ने कहा कि आपको खीर पूरी पसंद है इसलिए।
4: अच्छा अच्छा, आओ बैठो।
1: जी आप खाइए ना।
4: हाँ हाँ, अरे वाह, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, तुमने बनाई है?
1: जी। जगदीश भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना था।
4: पूछो बेटी।
1: जगदीश भाई, आपको लेकर सब ये कहते हैं कि आप हर छुट्टी के दिन खूब शराब पीते हैं और आपको कोई दुख है, मुझे बताइए ना, आप ऐसा क्यों करते हैं? जी मैंने ये सवाल पूछकर कोई गलती तो नहीं की ना?
4: नहीं बेटा, मुझे बताओ, क्या तुम जानती हो कि मैं अस्पताल में क्या काम करता हूँ?
1: जी नहीं तो।
4: ओह तो सुनो, मैं एक जल्लाद हूँ बेटी। अस्पताल में होने वाली प्रत्येक मौत के बाद उस शरीर की चीर फाड़ कर पोस्टमार्टम के लिए तैयार रखना मेरा काम है।
1: क्या?
4: हाँ बेटी, रोज देखता हूँ अभागी जवान लड़कियों को जो मार डाली जाती है, दुर्घटना में मरे पाए गए किसी माँ के नन्हे मुन्ने लाडले को, नई नवेली दुल्हन को विधवा कर इस जग से जाते उसके पति को, किसी बुढ़िया के अकेले सहारे को। अब क्या क्या गिनाऊँ तुम्हें? इस दुनिया के नए निराले सभी खेल इस मौत के आगे फेंकिए है बेटी, और उस मौत से जाने कितने तरीकों से मैं रोज मिलता हूँ। दिन भर के काम में सोचने को समय तो मिलता नहीं।
1: लेकिन जगदीश भाई, सब तो कहते हैं कि आप छुट्टी पर।
4: मुझे छुट्टी पर? अपने पाप याद आते हैं, जिस शरीर को माँ कितने जतन से अपने खून से पालती है, जन्म के बाद उसकी सालों देखभाल करती है, खिलाती है, पिलाती है, लाड़ करती है। हजारों माताओं का कलेजा चीरा है मैंने, नौकरी ही ऐसी है, क्या करूं?
1: मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको लेकर क्या क्या नहीं सोचा।
4: जानता हूं बेटी, लेकिन छुट्टी के दिन मैं प्रायश्चित करता हूं, शहर से बाहर के उस उजाड़ मंदिर में जाकर वहां के बूढ़े पुजारी के साथ दिन भर रहता हूं, उनकी सेवा करता हूं, मंदिर में झाड़ू देता हूं, आंगन की धुलाई करता हूं, जो भी काम बन पड़े बस दिन भर भूखे पेट करता रहता हूं, फिर वहां जो भी प्रसाद मिले उसी को लेकर घर आ जाता हूं। मंदिर शहर से दूर है, 8 किलोमीटर चलना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है, फिर थकान और दूसरे दिन के काम का सोचकर कदम लड़खड़ाने भी लगते हैं, मेरा यही नशा है बस।
1: मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पवित्र नशे को कितना गलत समझा, काश कि ऐसा नशा इस दुनिया के सभी लोग कर सकते हो। सभी तो बस बातें करते हैं जगदीश भाई, लेकिन आपने सही मायने में अपना जीवन सार्थक किया है। आपको काम करने का, सेवा करने का नशा है, आप धन्य हैं।
0: नशा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, हेमेंदु तिवारी, अनुराग तागड़े और अंतरा करवड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

Benedictus est Domine Deus in mensa, et in volatile.

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वाइस प्रिंसिपल फादर अजय मिंज येसु संघी के साथ हुए भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। आजकल जीवन की अधिकांश गतिविधियां डिजिटल तकनीकी एवं इंटरनेट से चलती हैं। यह कथन संत पापा लियो चौदहवें की हैं और जिससे हम सभी सहमत हैं। डिजिटल तकनीकी एवं इंटरनेट से जीवन सहज और सुविधाजनक प्रतीत होता है। इंटरनेट की वजह से युवाओं के पास कैरियर, पढ़ाई और मनोरंजन के ढेरों विकल्प हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। बहुत सारे विकल्प होने के कारण युवा भ्रमित हो जाते हैं और अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते। इंटरनेट के कारण पश्चिमी जीवन शैली, फैशन और संगीत का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह लोगों में अपनी संस्कृति एवं परंपरा खोने का खतरा है। सलाह दी जाती है कि हमें अपनी संस्कृति एवं परंपरा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति से ही हमारी पहचान बनती है। यह हमें आपस में जोड़ती, जीने का ढंग, सही और गलत की पहचान तथा समाज में रहने के नियम सिखाती है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वाइस प्रिंसिपल श्रद्धेय फादर अजय मिंज येसु संघी बतला रहे हैं कि युवाओं को अपनी संस्कृति को बनाए रखना क्यों जरूरी है और जेन जी को क्या करना चाहिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्रद्धेय फादर अजय मिंज येसु संघी के साथ एक भेंट वार्ता, जिनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
1: मैं फादर अजय मिंज हूँ, येसु समाजी हूँ और बिलोंग करता हूँ रांची प्रोविंस से। और बेसिकली मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में हूँ और वहाँ एजुकेशन के साथ साथ युवाओं के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। मेरा घर मांडर पारिश पड़ता है और मैं 4 साल आईकफ जो कहते हैं उनका भी मैं स्टेट एडवाइज़र भी रहा, तो उनके साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और ये भी महसूस करने को मिला। और अभी जो फिलहाल झारखंड में सरना और ईसाई आदिवासी के बीच जो तकरार होने लगा है, कभी कभी लगता है कि शायद युवा को अभी अपनी जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है और अपना जो जीवन है उन्होंने पाया है अपने पुरखों से, शायद उसको भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे जो ख्रिस्तीय युवा हैं और सरना युवा हैं, फिर उनमें जो तकरार होगी, शायद आपसी समझ में कमी पड़ सकती है और जिसके कारण आपस में फूट भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमारे सेंट्रल इंडिया का जो चर्च है, आदिवासी चर्च है, वहाँ एक फूट इन द सेंस सरना और ख्रिस्तीय के बीच, और उस जिसके कारण हमारे आदिवासी जीवन में भी प्रभाव होगा और जो हमारे चर्च को भी बहुत प्रभाव कर सकता है। और हमारा जो काम करने का जगह है, शायद हम उतने खुले तौर पर, उतने स्वतंत्रता के साथ शायद नहीं भी कर पाएंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि युवा आपस में जो एकता होनी चाहिए, आदिवासी एकता, वो हमेशा उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं चर्च को भी, मैं चाहता हूँ एज ए चर्च मेंबर चाहता हूँ कि हम उस दिशा में भी, उस एकता की दिशा में भी कुछ काम करें और युवा भी उसमें सहयोग दें।
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऐसा सुनने में आता है कि जो लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं वे लोग क्रिश्चियन हैं, वे लोग आदिवासी नहीं हैं, इस तरह की बातें होती हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे, मतलब कैसे युवाओं को समझाएंगे?
1: ऑब्वियसली वो कहना तो एक एजेंडा के तहत ही कहा जाता है, जस्ट क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनके बीच में ख्रिस्तीय और सरना के बीच में डिवाइड करें। लेकिन जस्ट कहना, और कहना इसलिए कहना कि क्योंकि वो सरना धर्म को नहीं मानते, क्योंकि आदिवासी केवल धर्म धर्म से नहीं डिफाइन होता, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति जो शायद हमें जन्म से ही मिलता है और जन्म से ही हम अपनी भाषा को सीखते हैं, नाच गान करते हैं, पूरे लाइफस्टाइल, जीवन दर्शन जो है उसको हम आगे लेकर चलते हैं। और इसीलिए मैं जब जो ये चीज़ें कहते हैं उनका मैं खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन अपने आप में विरोध भी करता हूँ कि वो सही नहीं है उनका कहना। और आदिवासी जन्म से होता है, कोई धर्म से नहीं, क्योंकि सरना धर्म या तो जैसे भी हम कहें या तो ईसाई धर्म शुरू से नहीं रहा है, उसके पहले ही हम आदिवासी थे और हम कंटिन्यू करते हैं आदिवासी होना। लेकिन अगर वही मुझको डर है, अगर हम संस्कृति को नकारते जाएंगे, चर्च में अगर होकर हम कटते जाएंगे, तो शायद लोग हमें ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे कि आप संस्कृति आपको पता नहीं, भाषा पता नहीं है, फिर आप जीवन दर्शन का पता नहीं है, तो फिर आप किस बात का आदिवासी हैं? तो हमें उस चर्च में होते हुए उन चीज़ों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि कई सारी चुनौतियाँ हैं, तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोग कहने का मतलब जो बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं?
1: सबसे पहले बड़े जन को हम तो समझा तो नहीं सकते हैं, फिर भी अपना जो अपने तरीके से जो हम इनिशिएटिव लेने की बात होती है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, कॉलेज में हूँ, तो अपने स्तर पर अगर मैं लोगों को, जैसे मैं हॉस्टल भी देखता हूँ, तो अगर मैं वहाँ बच्चों को अपने तरीके से एक करता हूँ, और ऐसा करने के बाद मैं एक जरूर मैसेज भी देता हूँ बाहर, कि वे भी बाहर जाके जब भी सुनते हैं कि आदिवासी और ख्रिस्ती अलग हैं, तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं मेरे जगह रह। तो एक एक तरीका है व्यक्तिगत तौर पर जो भी हम कर रहे हैं, वहाँ फूट की दिशा में काम ना करें, लेकिन हमेशा उसको एक करने की दिशा में काम करें। और साथ ही साथ जहाँ भी बन पड़े हमारे दायरे के बाहर, अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हमें उसमें भी भाग लेने की आवश्यकता, ताकि वहाँ जो होती है उनके जो अंदर की बात है उसे भी हम समझ पाएँ, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो शायद फूट या तो एक दूसरे से हम अलगाव की ओर आगे बढ़ते रहेंगे।
0: भी सभी विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को रख रहे हैं, तो और उनको मतलब शांत तरीके से ही कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, फिर भी कई लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जब भी किसी चीज़ के लिए हम खड़े होते हैं तो कठिनाइयाँ तो होती हैं, और एक चीज़ का मैं यह कहूँगा युवाओं को, कि जब आप सच्चाई को समझ गए हैं तो आप निश्चित तौर पर कठिनाई होने के बावजूद आपको खड़ा होना है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युवा जन ही समाज को एक नई दिशा देते हैं
0: जी।
1: बदलाव वही लोग लाते हैं, क्योंकि वे चीज़ों को देखते हैं, हो सकता है कभी कभी उनमें ज़्यादा ही उग्रता आ सकती है, वहीं पर उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन अगर उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया है तो उस सच्चाई को आगे तक लेने की आवश्यकता है। अपने आप को निश्चित तौर पर समझदार लोगों से भी जुड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार उनकी उग्रता या तो उनमें जो भावनात्मक उग्रता है वो शायद कभी कभी वो डिस्टर्ब कर सकता है, और उन्हें कभी कभी सही दिशा से, सच्चाई से अलग भी ले सकता है, और समाज में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। इसलिए उन चीज़ों से बचकर आगे सच्चाई को लेकर, सच्चाई के लिए हमेशा लड़ाई करते रहना है।
0: तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका नशा। लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओ, नशा सुनते ही आपके मन में क्या विचार आया? शायद शराब की बोतल, शराबी, शराब खाना वगैरह। शराब की नशा को छोड़ और भी नशा है जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, जैसे काम की नशा या वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक काम में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस वजह से वे हमेशा तनाव में रहते हैं और कभी आराम नहीं कर पाते। उसी तरह प्यार का नशा। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, प्यार एक नशा है। अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार प्यार में शराब जैसा नशा होता है। दरअसल प्यार में पड़े लोगों के मस्तिष्क में जिस तरह के बदलाव होते हैं वो दरअसल बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि शराब पीने के बाद। अगर हमें नशा करना है तो समाज कल्याण के कार्यों का करना चाहिए। समाज सेवा, शिक्षा दान और दीन दुखियों की सेवा का नशा जीवन में अपनाना चाहिए। महान लोगों ने दीन दुखियों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर जीवन को सार्थक बनाया। आपको नशा करना है तो समाज सेवा, शिक्षा दान और दीन दुखियों की सेवा का नशा करके तो देखिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका नशा।
1: इतनी रात गए पिछले दरवाजे से कोई आ रहा है। अजी सुनते हो? देखो तो जरा कहीं चोर न घुसाए हो घर में। रात के 1:30 बज रहे हैं।
2: अरे चिंता मत करो, ये जगदीश भाई होंगे, हर छुट्टी पर ऐसे ही पीकर आते हैं।
1: लेकिन अब वो क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है।
2: कुछ नहीं, खाना खाकर सो जाएंगे। घर में कोई भी नहीं है, खाना साथ ही लाए होंगे। तुम भी सो जाओ। जगदीश भाई के बारे में सभी को बस इतना ही मालूम है कि वे पास के अस्पताल में काम करते हैं, छुट्टी कभी नहीं करते। इसके पीछे भी कारण यह है कि वहीं पर दोनों वक्त का खाना मिल जाता है। उनकी पत्नी और लड़का सालों पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे।
1: बेचारे अब अकेले ही रहते हैं।
2: हाँ, तभी से छुट्टी के दिन इस तरह से दिखाई देते हैं।
1: लेकिन सुनिए तो, ये जगदीश भाई।
2: अरे अब तुम सो जाओ ना, मुझे इतना मालूम था, मैंने बता दिया। अब बाकी कल सुबह उठकर माँ से पूछ लेना।
3: हाँ ले आ, यहाँ सीढ़ियों पर ही दे दे।
1: माँ जी एक बात बताइए।
3: हाँ बेटा पूछ।
1: माँ जी ये अपने घर के पिछवाड़े में जो जगदीश भाई रहते हैं।
3: हाँ क्या हुआ उन्हें? तुझसे कुछ बोले तो नहीं वो?
1: जी बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनके बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा।
3: अरे सुनंदा, जगदीश भाई के बारे में मोहल्ले में हवा अच्छी नहीं है।
1: लेकिन क्या आज तक किसी ने भी उन्हें शराब खरीदते या बोतल हाथ में लिए हुए देखा है?
3: अरे नशे से लड़खड़ाते आदमी की पहचान तो सभी को होती है। तुम्हारी शादी के पहले सामने की पंडिताइन बोली भी थी कि अब जगदीश भाई को यहाँ से निकाल देना चाहिए। खैर वे जो टिके हैं सो टिके हैं यहाँ पर।
1: सचमुच सुनकर अजीब सा लगता है। लाइए मैं कप अंदर ले जाती हूँ, आप आराम से ऊपर जाइएगा, सीढ़ियों पर फिसलन है।
3: आह सुनंदा।
1: माजी
3: जल्दी आ।
1: अभी आई। माजी माजी, अरे लगता है आपका पैर फिसल गया है। हे भगवान कितना खून बह रहा है। माँ जी चलिए चलिए मैं ही ले चलती हूँ आपको। बस बस पास में ही अस्पताल।
3: हे भगवान
1: बस
3: बड़ा दर्द कर रहा है सुनंदा।
1: बस माँ जी अस्पताल आ ही गया बस।
4: अरे सुनंदा बेटी तुम यहाँ, और ये माँ जी को क्या हो गया?
1: जी ये सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, काफी खून बह गया है।
4: तुम चिंता ना करो, मैं सब कर दूंगा, इसी अस्पताल में तो हूँ पिछले 10 सालों से। आइए माँ जी।
1: माजी माजी आराम से, अब मैं यहीं पर हूँ।
4: तुम चिंता ना करो बेटी, मैं इनका ड्रेसिंग करवा कर अभी लाता हूँ।
1: जी ओह अब ये भी फोन को कितना बिजी रखते हैं। हेलो हाँ सुनिए, देखिए माजी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई हैं। हाँ चोट काफी है। क्या कहा? नहीं आ सकते? ठीक है अच्छा मैं देख लूंगी, शायद माजी को ड्रेसिंग करवा कर छोड़ देंगे। पूरे 2 हफ्ते हो गए आपको ड्रेसिंग करवाए हुए। डॉक्टर ने भी आज कहा कि समय पर इलाज मिलने के कारण घाव इतनी जल्दी भरा है।
3: अरे वो तो भला हो उस जगदीश भाई का, नहीं तो हमारे जैसे कितने ही मरीज थे वहाँ।
1: हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो अस्पताल में क्या काम करते हैं और छुट्टी के दिन ही क्यों शराब पीते हैं। शक्ल से तो वो आज ऐसे नहीं लगे।
3: अरे मुझे भी बहुत अचरज हुआ, और तो और उसने इलाज के पैसे भी नहीं लिए।
1: माँ जी इस बार किराया देने आएंगे ना तो मत लीजिए।
3: नहीं नहीं, वो कहाँ करने देता है ऐसा। एक काम कर सुनंदा।
1: क्या माँ जी?
3: तूने आज खीर पूरी बनाई है ना?
1: हाँ।
3: जगदीश भाई को बड़ी पसंद है, अभी वो घर में होंगे, आज अस्पताल में रसोईया छुट्टी पर है, बढ़िया थाली परोस कर ले जा उनके लिए।
1: जी जी, अभी जाती हूँ।
4: कौन है?
1: जी मैं सुनंदा, आपके लिए खाना लाई हूँ।
4: अरे सुनंदा बेटी, तुमने क्यों तकलीफ की?
1: माँ जी ने कहा कि आपको खीर पूरी पसंद है इसलिए।
4: अच्छा अच्छा, आओ बैठो।
1: जी आप खाइए ना।
4: हाँ हाँ, अरे वाह, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, तुमने बनाई है?
1: जी। जगदीश भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना था।
4: पूछो बेटी।
1: जगदीश भाई, आपको लेकर सब ये कहते हैं कि आप हर छुट्टी के दिन खूब शराब पीते हैं और आपको कोई दुख है, मुझे बताइए ना आप ऐसा क्यों करते हैं? जी मैंने ये सवाल पूछकर कोई गलती तो नहीं की ना?
4: नहीं बेटा, मुझे बताओ, क्या तुम जानती हो कि मैं अस्पताल में क्या काम करता हूँ?
1: जी नहीं तो।
4: ओह तो सुनो, मैं एक जल्लाद हूँ बेटी। अस्पताल में होने वाली प्रत्येक मौत के बाद उस शरीर की चीर फाड़ कर पोस्टमार्टम के लिए तैयार रखना मेरा काम है।
1: क्या?
4: हाँ बेटी, रोज देखता हूँ अभागी जवान लड़कियों को जो मार डाली जाती है, दुर्घटना में मरे पाए गए किसी माँ के नन्हे मुन्ने लाडले को, नई नवेली दुल्हन को विधवा कर इस जग से जाते उसके पति को, किसी बुढ़िया के अकेले सहारे को। अब क्या क्या गिनाऊँ तुम्हें, इस दुनिया के नए निराले सभी खेल इस मौत के आगे फेंकिए है बेटी। और उस मौत से जाने कितने तरीकों से मैं रोज मिलता हूँ, दिन भर के काम में सोचने को समय तो मिलता नहीं।
1: लेकिन जगदीश भाई, सब तो कहते हैं कि आप छुट्टी पर।
4: मुझे छुट्टी पर? अपने पाप याद आते हैं, जिस शरीर को माँ कितने जतन से अपने खून से पालती है, जन्म के बाद उसकी सालों देखभाल करती है, खिलाती है पिलाती है लाड़ करती है, हजारों माताओं का कलेजा चीरा है मैंने, नौकरी ही ऐसी है, क्या करूं?
1: मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको लेकर क्या क्या नहीं सोचा।
4: जानता हूं बेटी, लेकिन छुट्टी के दिन मैं प्रायश्चित करता हूं, शहर से बाहर के उस उजाड़ मंदिर में जाकर वहां के बूढ़े पुजारी के साथ दिन भर रहता हूं, उनकी सेवा करता हूं, मंदिर में झाड़ू देता हूं, आंगन की धुलाई करता हूं, जो भी काम बन पड़े बस दिन भर भूखे पेट करता रहता हूं, फिर वहां जो भी प्रसाद मिले उसी को लेकर घर आ जाता हूं। मंदिर शहर से दूर है, 8 किलोमीटर चलना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है, फिर थकान और दूसरे दिन के काम का सोचकर कदम लड़खड़ाने भी लगते हैं, मेरा यही नशा है बस।
1: मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पवित्र नशे को कितना गलत समझा, काश कि ऐसा नशा इस दुनिया के सभी लोग कर सकते हो। सभी तो बस बातें करते हैं जगदीश भाई, लेकिन आपने सही मायने में अपना जीवन सार्थक किया है, आपको काम करने का सेवा करने का नशा है, आप धन्य हैं।
0: नशा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, हेमेंदु तिवारी, अनुराग तागड़े और अंतरा करवड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं वाटिकन रेडियो। वाटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा कर

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने 9 अगस्त को वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिए गए अपने संदेश में कहा, हम जीवन के तूफान में भी यीशु के संग संयुक्त रहें।
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज का सुसमाचार गलीलिया समुद्र में एक आंधी के बीच पानी में चलकर यीशु का अपने शिष्यों के पास आने की चर्चा करता है। रोटियों और मछलियों के चमत्कार उपरांत स्वामी अपने शिष्यों को नाव पर चढ़कर निकलने को कहते हैं, जबकि वे स्वयं पर्वत के ऊपर एकांत में प्रार्थना करने को जाते हैं। तट से दूर एक बार निकलने के बाद शिष्यगण अपने को आंधी में फंसा पाते और आगे बढ़ने में संघर्ष करते हैं। एक सफल अनुभव के उपरांत जहां वे एक चमत्कारी निशानी के नायकों स्वरूप अपने को देखते, अब वे अपने में निसहाय आंधी और तूफान की जोखिम का सामना करने में भयभीत हो जाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि जैसे कि रात अपने में खत्म होने को थी, यीशु उनकी ओर लहरों के उफान में पानी पर चलते हुए आते हैं और उन्हें देखकर शिष्य भयभीत हो जाते। वे उन्हें एक प्रेत समझते हैं, लेकिन वे उन्हें कहते हैं, ढाड़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। ईश्वर की उपस्थिति सारी चीजों को बदल देती है। यहाँ तक कि पेत्रुस लहरों में कुछ कदम चलकर उनकी ओर आते हैं, लेकिन लहरों को देखकर वे भयभीत हो जाते और पानी में डूबने लगते हैं, जबकि यीशु हाथ बढ़ाकर उन्हें बचा लेते हैं। इस भांति जब स्वामी नाव में चढ़ते तो आंधी थम जाती है और स्वतः ही विश्वास की एक घोषणा शिष्यों के हृदय से निकल पड़ती है,
2: Davvero tu sei figlio di Dio.
1: सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। संत पापा लियो ने कहा कि इस बिंदु तक पहुंचने हेतु शिष्यों के लिए एक चमत्कार को देखना काफी नहीं था और ना ही लोगों की निगाहों में अपनी सफलता का एहसास करना, बल्कि उन्हें अपनी कमजोरी का अनुभव करना था और उसके अंदर ईश्वर की उपस्थिति को देखना। केवल यह अनुभूति ही उनकी आंखों और हृदयों को खोलती है जो उनके निकट रहते हैं, जहां वे तूफानों के मध्य भी शांति का अनुभव करते हैं। कुछ समय बाद यीशु उन्हें कहेंगे, यदि तुम में विश्वास होगा और तुम संदेह नहीं करोगे, यदि तुम इस पर्वत से कहोगे यहाँ से उखड़कर समुद्र में जाल लग, तो ऐसा ही होगा। शिष्यों के लिए समुद्र में वैसे ही बातों की अनुभूति होती है, ख्रिस्त की शांति की, जो पर्वत में प्रार्थना कर रहे होते, जो समुद्र की लहरों से होते हुए उनके बीच में उपस्थित होते हैं। संत पापा ने कहा कि यह चमत्कार हमारे लिए विशेष बातों की शिक्षा देती है। पहला, हम अपनी सफलता से ना बहकें और ना ही अहंकारी बने, वहीं हम अपने जीवन में निराश ना हों, यहाँ तक कि अंधेरे की स्थितियों में जब हम शक्तिहीन अनुभव करते हुए मुसीबतों का सामना करते हैं। हमारे प्रयासों के बावजूद हमें यह लगता है कि हम आगे बढ़ने के बदले पीछे की ओर जा रहे हैं।
2: In qualsiasi circostanza, Gesù non ci abbandona.
1: परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यीशु हमारा परित्याग कभी नहीं करते हैं। और यदि हम नम्रता से अपने जीवन रूपी नाव में उनका स्वागत करते हैं, प्रार्थना संस्कारों और उनके वचनों को सुनने के माध्यम से, तो हम उनमें शांति, ज्योति और अपने जीवन यात्रा के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। माता मरियम, जो विश्वास के कारण धन्य मानी गई, हमें ईश्वर में विश्वास करते हुए एक समर्पित जीवन जीने हेतु मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सभी विश्वासी समुदाय के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया।
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex omnunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापालियो ने सूडान, विशेषकर एल ओबदेई शहर के विकट परिस्थिति के संबंध में अपनी चिंता जताई। उन्होंने देश के लोगों के प्रति अपने आध्यात्मिक सामीप्य प्रकट करते हुए इस बात की अपील की कि देश के नेतागण जन सामान्य लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निवेदन किया कि वे युद्ध की रोकथाम हेतु शीघ्र कदम उठाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे पीड़ित लोगों का सहारा बने, उन व्यक्तियों के हृदयों को परिवर्तित करें जो हिंसा के बीज बोते हैं, और देश में बहुप्रतीक्षित शांति स्थापित करने में मदद मिले। संत पापा ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मारे और घायल हो रहे बच्चों के मिलते खबरों पर दुख व्यक्त की। दुखदायी घटनाएं जारी हैं, वास्तव में उनमें वृद्धि हुई है, जिसमें बहुत से नागरिक मारे जा रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने युद्ध के शिकार घायलों और युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी निकटता के भाव प्रकट किए। इतने कष्ट को देखते हुए मैं मानवीय कानूनों का सम्मान करने और दोनों तरफ से आम लोगों पर हमला बंद करने की हृदय से अपील करता हूँ। युद्ध से सिर्फ युद्ध होती है और इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। उन्होंने कहा कि अब हिंसा के इस दौर को रोकने और शांति का रास्ता बनाने के लिए कूटनीति और वार्ता की जरूरत है। इसके उपरांत संत पापा ने रोम और विभिन्न देशों से आए हुए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने मिलान धर्म प्रांत के युवाओं, एन्ना के स्काउट दल और पादुआ धर्म प्रांत के युवाओं का अभिवादन किया। संत पापा ने कई युवा दलों की उपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराया, जो प्रशिक्षण और मिलन के कार्यक्रमों में अपनी छुट्टियों को फलप्रद व्यतीत किया है। उन्होंने कहा, यह आशा का संकेत है। संत पापा ने युवाओं का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि इन दिनों धर्म विधि के कैलेंडर हमारे लिए बहुत सारे संतों की सूची प्रदान करते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, जिनके बारे में आप और अधिक गहराई से जान सकते हैं। उन्होंने कहा, कल हमने महान संत डोमिनिको की याद की, जो उपदेशक पुरोहितों के संस्थापक हैं। आज हम क्रूस के संत तेरेसा बेर्नाडेट एडिथ एटिने की याद करते हैं, जो ऑस्विट्स में मारे गए कार्मेलाइट और यूरोप के सह संरक्षक संत हैं। कल हम संत लॉरेंस रोम कलिसा के उपयाजक, परसों असीसी की संत क्लारा का त्यौहार मनाएंगे, जिन्होंने अपने साथी नागरिक संत फ्रांसिस के जीवन शैली का अनुसरण करते हुए गरीब और विनम्र यीशु के लिए अपने आरामदायक जीवन का परित्याग कर दिया। संत पापा ने कहा, प्रिय युवाओं, आप अपने को सुसमाचार के इन अनुकरणीय साक्षियों से प्रेरित होने दें। इतना कहने के बाद संत पापा ने सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए विदा लिए।
2: बोना डोमेनिका।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें 7 सितंबर को जेना जानो में माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय का दौरा करेंगे और गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। माता मरियम की छवि के सामने प्रार्थना करते हुए उनकी एक पेंटिंग का निरावरण भी किया जाएगा। रोम से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे छोटे से शहर जेना जानो रोमन साम्राज्य के दौरान यह गर्मियों के समय को बिताने का स्थान था और मध्य युग में एक गांव जो बाद में कोलोना परिवार की जागीर का हिस्सा बन गया। जेना जानो में यह महागिरजाघर माता मरियम नेक सलाहकारिणी का तीर्थालय है, जो असल में कुंवारी मरियम को समर्पित एक छोटा सा गिरजाघर था और 14वीं सदी में अगुस्टीनियन धर्म संघियों को सौंप दिया गया था। संत पापा परमाध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद 10 मई 2025 को माता मरियम का दर्शन करने गए थे। 1 साल से ज्यादा समय बाद वे 7 सितंबर को शाम 6 बजे धन्या कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। संत पापा लियो ने परमाध्यक्ष के रूप में जेना जानो की अपनी पहली यात्रा के दौरान महागिरजाघर के बाहर एकत्रित सभी विश्वासियों से कहा था, मैं नए मिशन के इस पहले दिनों के दौरान यहाँ आना चाहता था, जिसे कलीसिया ने मुझे सौंपा है, ताकि पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में मिशन को जारी रखा जा सके। तीर्थालय की अतिथि पुस्तिका में उन्होंने लिखा, उन्हें माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय पर आने का कर्तव्य और गहरी इच्छा महसूस हुई। संत पापा ने लिखा, मेरे पूरे जीवन में वे अपनी ममतामयी उपस्थिति, अपनी बुद्धिमता और अपने बेटे के प्रति अपने प्यार के उदाहरण के साथ मेरे साथ रही, जो हमेशा मेरे विश्वास के केंद्र में है, राह, सच्चाई और जीवन। आपकी मदद के लिए धन्यवाद माँ, इस नए मिशन में मेरे साथ रहें। एक अगुस्टीनियन फ्रायर के तौर पर वे दशकों से माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय में आते रहे थे। वे पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में रोम में एक युवा छात्र के तौर पर वहां गए थे। बाद में वे फ्रायर जनरल के तौर पर और उसके बाद चिकलायो के धर्माध्यक्ष और कार्डिनल के तौर पर अक्सर आते रहे थे। उधर पेरू धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कार्लोस ने संत पापा लियो 14वें की नवंबर में उस देश की यात्रा पर टिप्पणी की, जहां उन्होंने एक मिशनरी के तौर पर काम किया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि यह शांति और भाईचारे का समय होगा, लेकिन देश की भलाई के लिए मिलकर काम करने के बेहतर नजरिए का भी समय होगा। संत पापा लियो 14वें 11 से 17 नवंबर को लैटिन अमेरिका से होकर एक लंबी प्रेरितिक यात्रा पर जाएंगे, जिसमें उरुग्वे और अर्जेंटीना में भी रुकना शामिल है। पेरू धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कार्लोस ने वाटिकन मीडिया के सामने ये बातें कहीं और इस बात पर जोर दिया कि यह प्रेरितिक यात्रा जो लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकाल्पा से होकर गुजरेगी, सभी पेरू वासियों के लिए शांति, मेलमिलाप और उम्मीद का पल होगा। 5 अगस्त को संत पापा लियो 14वें के पेरू दौरे की आधिकारिक पुष्टि से पूरे देश में हजारों भक्तों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, जहां रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट एक मिशनरी के तौर पर लगभग 20 साल बिताए थे। धर्माध्यक्ष कार्लोस कहते हैं कि यह देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच एकता, शांति और उम्मीद को मजबूत करने का एक मौका है। हमें उम्मीद है कि यह शांति, समझ और भाईचारे का समय होगा। उधर पिछली रात यूक्रेन के खार्किव इलाके में हुई बमबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए और कई घर तबाह हो गए हैं। सूमी में शहर में 5 बम गिराए जाने से कम 14 लोग घायल हो गए। इसी तरह ओडेसा में एक रूसी हमले में 14 लोग घायल हो गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। नीपर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि उसके एक गोदाम में 24 घंटे से भी कम समय में 2 बार हमला हुआ, जिससे लगभग $5 लाख का आपातकाल मेडिकल सामान तबाह हो गया।
कीव के कई इलाकों में रूस के कई हफ्तों से हो रहे जबरदस्त हमलों और बमबारी के बाद यूक्रेन में ये हालात बन रहे हैं। इस बीच यूक्रेन जवाब देने में कामयाब हो रहा है और रूसी इलाके के अंदर तक निशाने पर हमला करने की क्षमता विकसित कर रहा है। तातारस्तान के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी सीमा से लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व में एक बड़े तेल और पेट्रोकेमिकल हब पर ड्रोन हमले में कम से कम 13 मौतें हुई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मास्को और प्योंगयांग के बीच मिलिट्री सहयोग को और मजबूत करने की भी निंदा की। जेलेंस्की के अनुसार रूसी जमीन पर 30,000 से 50,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया गया है, जिसका मकसद आधुनिक लड़ाई की तकनीकों का अनुभव हासिल करना भी है। कीव ने यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेनी जमीन पर उत्तरी कोरिया में बनी मिसाइलों का पता लगाया है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हाल के दिनों में पश्चिमी रूस में एक उत्तरी कोरियाई मिसाइल यूनिट की तैनाती की रिपोर्ट दी है। उधर लाल सागर बंदरगाह शहर मोखा पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए और 30 घायल हुए। यह हूथी विद्रोहियों के हमले में मारे गए लोगों की संख्या है। यह हमला पश्चिमी यमन के बंदरगाह शहर मोखा पर हुआ है। यमन की सरकारी सेना के मुताबिक मरने वालों में 4 सैनिक और 3 आम नागरिक थे, जबकि घायलों में 13 आम नागरिक थे। मिसाइलों और ड्रोन ने मिलिट्री स्थानों के साथ साथ संरचनाओं और रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया। वायु सुरक्षा बल ने कथित तौर पर 11 बिना पायलट वाले एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने 9 अगस्त को वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिए गए अपने संदेश में कहा, हम जीवन के तूफान में भी यीशु के संग संयुक्त रहें।
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज का सुसमाचार, गलीलिया समुद्र में एक आंधी के बीच पानी में चलकर यीशु का अपने शिष्यों के पास आने की चर्चा करता है। रोटियों और मछलियों के चमत्कार उपरांत स्वामी अपने शिष्यों को नाव पर चढ़कर निकलने को कहते हैं, जबकि वे स्वयं पर्वत के ऊपर एकांत में प्रार्थना करने को जाते हैं। तट से दूर एक बार निकलने के बाद शिष्यगण अपने को आंधी में फंसा पाते और आगे बढ़ने में संघर्ष करते हैं। एक सफल अनुभव के उपरांत जहां वे एक चमत्कारी निशानी के नायकों स्वरूप अपने को देखते, अब वे अपने में निसहाय आंधी और तूफान की जोखिम का सामना करने में भयभीत हो जाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि जैसे कि रात अपने में खत्म होने को थी, यीशु उनकी ओर लहरों के उफान में पानी पर चलते हुए आते हैं और उन्हें देखकर शिष्य भयभीत हो जाते। वे उन्हें एक प्रेत समझते हैं, लेकिन वे उन्हें कहते हैं, ढाड़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। ईश्वर की उपस्थिति सारी चीजों को बदल देती है। यहाँ तक कि पेत्रुस लहरों में कुछ कदम चलकर उनकी ओर आते हैं, लेकिन लहरों को देखकर वे भयभीत हो जाते और पानी में डूबने लगते हैं, जबकि यीशु हाथ बढ़ाकर उन्हें बचा लेते हैं। इस भांति जब स्वामी नाव में चढ़ते तो आंधी थम जाती है और स्वतः ही विश्वास की एक घोषणा शिष्यों के हृदय से निकल पड़ती है,
2: Davvero, tu sei figlio di Dio.
1: सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। संत पापा लियो ने कहा कि इस बिंदु तक पहुंचने हेतु शिष्यों के लिए एक चमत्कार को देखना काफी नहीं था और न ही लोगों की निगाहों में अपनी सफलता का एहसास करना, बल्कि उन्हें अपनी कमजोरी का अनुभव करना था और उसके अंदर ईश्वर की उपस्थिति को देखना। केवल यह अनुभूति ही उनकी आँखों और हृदयों को खोलती है जो उनके निकट रहते हैं, जहाँ वे तूफानों के मध्य भी शांति का अनुभव करते हैं। कुछ समय बाद यीशु उन्हें कहेंगे, यदि तुम में विश्वास होगा और तुम संदेह नहीं करोगे, यदि तुम इस पर्वत से कहोगे यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो ऐसा ही होगा। शिष्यों के लिए समुद्र में वैसे ही बातों की अनुभूति होती है, ख्रिस्त की शांति की, जो पर्वत में प्रार्थना कर रहे होते, जो समुद्र की लहरों से होते हुए उनके बीच में उपस्थित होते हैं। संत पापा ने कहा कि यह चमत्कार हमारे लिए विशेष बातों की शिक्षा देती है। पहला, हम अपनी सफलता से ना बहकें और ना ही अहंकारी बने, वहीं हम अपने जीवन में निराश ना हों,

0: यहाँ तक कि अंधेरे की स्थितियों में जब हम शक्तिहीन अनुभव करते हुए मुसीबतों का सामना करते हैं। हमारे प्रयासों के बावजूद हमें यह लगता है कि हम आगे बढ़ने के बदले पीछे की ओर जा रहे हैं।
1: In qualsiasi circostanza, Gesù non ci abbandona.
0: परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यीशु हमारा परित्याग कभी नहीं करते हैं। और यदि हम नम्रता से अपने जीवन रूपी नाव में उनका स्वागत करते हैं, प्रार्थना संस्कारों और उनके वचनों को सुनने के माध्यम से, तो हम उनमें शांति, ज्योति और अपने जीवन यात्रा के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। माता मरियम, जो विश्वास के कारण धन्य मानी गई, हमें ईश्वर में विश्वास करते हुए एक समर्पित जीवन जीने हेतु मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सभी विश्वासी समुदाय के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया।
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex omnunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा लियो ने सूडान, विशेषकर एल ओबदेई शहर के विकट परिस्थिति के संबंध में अपनी चिंता जताई। उन्होंने देश के लोगों के प्रति अपने आध्यात्मिक सामिप्य प्रकट करते हुए इस बात की अपील की कि देश के नेतागण जन सामान्य लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निवेदन किया कि वे युद्ध की रोकथाम हेतु शीघ्र कदम उठाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे पीड़ित लोगों का सहारा बने, उन व्यक्तियों के हृदयों को परिवर्तित करें जो हिंसा के बीज बोते हैं, और देश में बहुप्रतीक्षित शांति स्थापित करने में मदद मिले। संत पापा ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मारे और घायल हो रहे बच्चों के मिलते खबरों पर दुख व्यक्त की। दुखदायी घटनाएं जारी हैं, वास्तव में उनमें वृद्धि हुई है, जिसमें बहुत से नागरिक मारे जा रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने युद्ध के शिकार घायलों और युद्ध से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी निकटता के भाव प्रकट किए। इतने कष्ट को देखते हुए मैं मानवीय कानूनों का सम्मान करने और दोनों तरफ से आम लोगों पर हमला बंद करने की हृदय से अपील करता हूँ। युद्ध से सिर्फ युद्ध होती है और इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। उन्होंने कहा कि अब हिंसा के इस दौर को रोकने और शांति का रास्ता बनाने के लिए कूटनीति और वार्ता की जरूरत है। इसके उपरांत संत पापा ने रोम और विभिन्न देशों से आए हुए सभी तीर्थ यात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने मिलान धर्म प्रांत के युवाओं, एन्ना के स्काउट दल और पादुआ धर्म प्रांत के युवाओं का अभिवादन किया। संत पापा ने कई युवा दलों की उपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराया, जो प्रशिक्षण और मिलन के कार्यक्रमों में अपनी छुट्टियों को फलप्रद व्यतीत किया है। उन्होंने कहा, यह आशा का संकेत है। संत पापा ने युवाओं का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि इन दिनों धर्म विधि के कैलेंडर हमारे लिए बहुत सारे संतों की सूची प्रदान करते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, जिनके बारे में आप और अधिक गहराई से जान सकते हैं। उन्होंने कहा, कल हमने महान संत डोमिनिको की याद की, जो उपदेशक पुरोहितों के संस्थापक हैं। आज हम क्रूस के संत तेरेसा बेर्नाडेत एडिथ एटिने की याद करते हैं, जो ऑस्ट्विट्स में मारे गए कार्मेलाइट और यूरोप के सह संरक्षक संत हैं। कल हम संत लॉरेंस रोम कलिसा के उपयाजक, परसों असीसी की संत क्लारा का त्यौहार मनाएंगे, जिन्होंने अपने साथी नागरिक संत फ्रांसिस के जीवन शैली का अनुसरण करते हुए गरीब और विनम्र यीशु के लिए अपने आरामदायक जीवन का परित्याग कर दिया। संत पापा ने कहा, प्रिय युवाओं, आप अपने को सुसमाचार के इन अनुकरणीय साक्षियों से प्रेरित होने दें। इतना कहने के बाद संत पापा ने सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए विदा लिए।
1: बोना डोमेनिका।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14 में 7 सितंबर को जेना जानो में माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय का दौरा करेंगे और गिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। माता मरियम की छवि के सामने प्रार्थना करते हुए उनकी एक पेंटिंग का निरावरण भी किया जाएगा। रोम से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे छोटे से शहर जेना जानो रोमन साम्राज्य के दौरान यह गर्मियों के समय को बिताने का स्थान था और मध्य युग में एक गांव जो बाद में कोलोना परिवार की जागीर का हिस्सा बन गया। जेना जानो में यह महागिरजाघर माता मरियम नेक सलाहकारिणी का तीर्थालय है, जो असल में कुंवारी मरियम को समर्पित एक छोटा सा गिरजाघर था और 14वीं सदी में अगुस्टीनियन धर्म संघियों को सौंप दिया गया था। संत पापा परमाध्यक्ष बनने के 2 दिन बाद 10 मई 2025 को माता मरियम का दर्शन करने गए थे। 1 साल से ज्यादा समय बाद वे 7 सितंबर को शाम 6 बजे धन्या कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। संत पापा लियो ने परमाध्यक्ष के रूप में जेना जानो की अपनी पहली यात्रा के दौरान महागिरजाघर के बाहर एकत्रित सभी विश्वासियों से कहा था, मैं नए मिशन के इस पहले दिनों के दौरान यहाँ आना चाहता था जिसे कलीसिया ने मुझे सौंपा है, ताकि पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में मिशन को जारी रखा जा सके। तीर्थालय की अतिथि पुस्तिका में उन्होंने लिखा, उन्हें माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय पर आने का कर्तव्य और गहरी इच्छा महसूस हुई। संत पापा ने लिखा, मेरे पूरे जीवन में वे अपनी ममतामयी उपस्थिति, अपनी बुद्धिमता और अपने बेटे के प्रति अपने प्यार के उदाहरण के साथ मेरे साथ रही, जो हमेशा मेरे विश्वास के केंद्र में है। राह, सच्चाई और जीवन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद माँ। इस नए मिशन में मेरे साथ रहें। एक अगुस्टीनियन फ्रायर के तौर पर वे दशकों से माता मरियम नेक सलाहकारिणी के तीर्थालय में आते रहे थे। वे पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में रोम में एक युवा छात्र के तौर पर वहां गए थे। बाद में वे फ्रायर जनरल के तौर पर और उसके बाद चिकलायो के धर्माध्यक्ष और कार्डिनल के तौर पर अक्सर आते रहे थे। उधर पेरू धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कार्लोस ने संत पापा लियो 14वें की नवंबर में उस देश की यात्रा पर टिप्पणी की जहां उन्होंने एक मिशनरी के तौर पर काम किया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि यह शांति और भाईचारे का समय होगा, लेकिन देश की भलाई के लिए मिलकर काम करने के बेहतर नजरिए का भी समय होगा। संत पापा लियो 14वें 11 से 17 नवंबर को लैटिन अमेरिका से होकर एक लंबी प्रेरितिक यात्रा पर जाएंगे, जिसमें उरुग्वे और अर्जेंटीना में भी रुकना शामिल है। पेरू धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कार्लोस ने वाटिकन मीडिया के सामने ये बातें कहीं और इस बात पर जोर दिया कि यह प्रेरितिक यात्रा जो लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकाल्पा से होकर गुजरेगी, सभी पेरू वासियों के लिए शांति, मेलमिलाप और उम्मीद का पल होगा। 5 अगस्त को संत पापा लियो 14वें के पेरू दौरे की आधिकारिक पुष्टि से पूरे देश में हजारों भक्तों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, जहां रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट एक मिशनरी के तौर पर लगभग 20 साल बिताए थे। धर्माध्यक्ष कार्लोस कहते हैं कि यह देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच एकता, शांति और उम्मीद को मजबूत करने का एक मौका है। हमें उम्मीद है कि यह शांति, समझ और भाईचारे का समय होगा। उधर पिछली रात यूक्रेन के खार्किव इलाके में हुई बमबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए और कई घर तबाह हो गए हैं। सूमी में शहर में 5 बम गिराए जाने से कम 14 लोग घायल हो गए। इसी तरह ओडेसा में एक रूसी हमले में 14 लोग घायल हो गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। नीपर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि उसके एक गोदाम में 24 घंटे से भी कम समय में 2 बार हमला हुआ, जिससे लगभग $5 लाख का आपातकाल मेडिकल सामान तबाह हो गया।
कीव के कई इलाकों में रूस के कई हफ्तों से हो रहे जबरदस्त हमलों और बमबारी के बाद यूक्रेन में ये हालात बन रहे हैं। इस बीच यूक्रेन जवाब देने में कामयाब हो रहा है और रूसी इलाके के अंदर तक निशाने पर हमला करने की क्षमता विकसित कर रहा है। तातारस्तान के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी सीमा से लगभग 1,200 किलोमीटर पूर्व में एक बड़े तेल और पेट्रोकेमिकल हब पर ड्रोन हमले में कम 13 मौतें हुई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मास्को और प्योंगयांग के बीच मिलिट्री सहयोग को और मजबूत करने की भी निंदा की। जेलेंस्की के अनुसार रूसी जमीन पर 30,000 से 50,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया गया है, जिसका मकसद आधुनिक लड़ाई की तकनीकों का अनुभव हासिल करना भी है। कीव ने यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेनी जमीन पर उत्तरी कोरिया में बनी मिसाइलों का पता लगाया है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हाल के दिनों में पश्चिमी रूस में एक उत्तरी कोरियाई मिसाइल यूनिट की तैनाती की रिपोर्ट दी है। उधर लाल सागर बंदरगाह शहर मोखा पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए और 30 घायल हुए। यह हूथी विद्रोहियों के हमले में मारे गए लोगों की संख्या है। यह हमला पश्चिमी यमन के बंदरगाह शहर मोखा पर हुआ है। यमन की सरकारी सेना के मुताबिक मरने वालों में 4 सैनिक और 3 आम नागरिक थे, जबकि घायलों में 13 आम नागरिक थे। मिसाइलों और ड्रोन ने मिलिट्री स्थानों के साथ साथ संरचनाओं और रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया। वायु सुरक्षा बल ने कथित तौर पर 11 बिना पायलट वाले एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।